विरूप वाले न जिस गुरु ने उसको मुझे फतेह कुछ करना हो लोलू नक वन ने पंडव सी मोने कुछ तक युष्क मोह मोने कुछ तक लोलू अन्य ने वो शहीद है।